मर गए। माम ची गर्मी बार आया मिन्ना तो गर्मी दिपे माम अगर दुखा दर समाज वाय खुरी जो बाल

0: मिंगर ने झूठ मारना जोड़ी कालू
1: बेसर आगे के चैट है मैं
0: कंपु गालू ने जुम रार जुम बाउडो इंद्रो क्यों मचापन ने जैसे जैसे जुम बांपुच इंद्रिम दक्कन ये मौको एकालिस मौक बसा को ताके न मुड़ ताके न वार्ता